त्रुदासिला के बादरूपिन तो तस्सा किया किया मुनियना मुन्सांग तामवाये ओ तलुंग इंडिया निबिलिया बाईया गिलिया बकातसिया नंगांगा किताये